साईं जत पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा।

दशमी कभ्यो बाच बेंती चौपाई अमरी करो हाथ धै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब शरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा अमरे दुष्ट सबै तुम काबो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करो।

पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, भेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आहद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सगल प्रजा जन आप सवारी, सेव घन को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को फल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पिछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सफर कृपा दुष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पिछन, घट घट के पट पट की जन, जबद करख करा।

अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पुप्पा अंडज जेरज से तज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दिन्नी कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकट्ठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है।

सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दुष्ट तन जा हे ने हर हव, ताके ताप तनक मैं हर हव। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा शबय सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल पास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बिछाई। कृपा करी हम्बर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। केलवे के सगल देहे को हरता, दुष्ट दुखियन को शह करता। श्री अस्तुज पे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकल्ला। मन बांचत फल पावे सोई, दुखनाथ से ब्यापत कोई अड़िल। सुने गुं यो यहे सुरसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाव निगना दिनर के रह, ओजो याकी एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सतरह सहस पणिजय, अर्ध सहसवन तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रब वारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रो पखियाने, त्रया चरित्रे मंत्री भुभ संवादे। 405 चरित्र समापतम, सत शुभम सत अबजू दोहरा। दाह जान कर दास पर की जय कृपा अपार। आप हाद राख मोहे, मन क्रम बचन विचार। चौपाई मैना ग्रह प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कबहू न त्याऊ।

गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तो

तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, वजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही करते राय, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, करसांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो, जिस दियां ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुदवास कीते, काल कंटुक मारिया, तुरगर्म पाया तुद जिन काउ, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होवा, तित कर अनहद वाजे, अणद सुनो बट भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनह तूरे, मुदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारु, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंछाए, तिसका हुए उधारो, ए वस्त तजी नह जाई, नित नित राघुर धारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म बसारो, सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैं नहूं जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वह हरिया पौड़ी, तथे

जिस हिरदे च उतरी है आई है उत्थे सारियां चिंतावां दा सफाया कर दिता इस बाणी ने। जदों महाराज गुरु नानक देव साहिब किते किसे दा भला करन जांदे, कई बार महाराज वचन करदे मरदानिया रबाब बजा बाणी आई है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई मरदाना जी ने रबाब बजाउणी ते महाराज साहब जी ने ये पावन बाणी गाउणी जिहड़ी दरगाह तो आई है। महाराज जी कहिंदे जिहड़े इस बाणी नाल जुड़ जांदे आ भाई उहनां दे अंदर भी फिर वाहिगुरु दे सुनेहे आउणे शुरू हो जांदे आ, अनहद शब्द के रूप के आने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने अंदर की चिंता, उन्होंने अंदर के संसे चोरे दुख तकलीफा ये पावन बाणी सब कुछ मेट के रख दिंदी है। नहीं तो संसार जड़ा है, संसार के जीव जड़े ने पावन बाणी तो टुट के वाहिगुरु के नाम तो टुट के संसार दे विच संसार दियां आसामां दे विच संसार दियां फुरनियां दे विच संसार दियां संकल्पां दे विच ऐसे फसे हुए ने कि बाहर निकलन दा साह नहीं लेंदे, ना उद्दम ही करदे ने। क्यों? क्योंकि कई बार ना जेड़े आजाद परिंदे भी हुंदे है जे लम्मा समा किते किसे पिंजरे च कैद रह जान ते उन्हां नूं भावे पिंजरा खोल भी दिता जावे वो लम्मी उडारी नूं भुल के पिंजरे च रहना पसंद कर लेंदे है। इसे तरह जेड़ियां कौमां लम्मा समा गुलाम रह जान उन्हां नूं जिवें गुलामी की आदत पै जांदी है, उन्हां नूं गुलामी मिठी लगन लग पैंदी है, प्यारी लगन लग पैंदी है।

ने वचन किया सी मन भाउण दी वस्तु देंगे शुद्ध जपजी साहिब दा पाठ सुनाउण वाले नूं। ते महाराज जी दे तबेले च घोड़ा बड़े कमाल दा है, ते जे महाराज साहब सने सोने दी काठी ते दे देण ते मेरे मन दी मुराद पूरी हो जाए। महाराज साहब जी नाले मन च संकल्प कर रहे सन गुरता गद्दी देण दा, नाले गुरता गद्दी तो थले नूं उतरदे जा रहे सन। उसे वेले फिर टिके उसे तरह सुशोभित हो गए। उन्हें फतेह बुलाई, महाराज साहब जी ने घोड़ा मंगा के सिख नूं दे दिता, नाले बचन किया सिखा ये जड़ी मन की कामना है, ये मन की आसा है ना, ये वाहिगुरु की बख्शिश तो बहुत छोटी है, ये जाल च ना फसया करो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, अज तैनू ओ दात मिलन लगी सी जेड़ी दात किसी दिन आम दे वाहिगुरु दे आप स्वरूप धारे तो बिना किसी दिन नसीब च नहीं होंगी। ते एक संकल्प करके वो एडी बड़ी दात खो दिती। सो महाराज जी कहिंदे भाई जदों असी कोई आस रख लैने उदों बहुत वड्डा फल जिहड़ा वो छोटा हो जांदा है। इस करके बिना आसा तो जपिया करो, क्योंकि जदों बिना आसा तो जपदे हां उदों फिर आस भी नहीं हुंदी एड्डा फल हासिल हुंदा। आखो सतनाम। हुक्मै बुझै निरासा होई। महाराज जी कहिंदे जे कोई गुरु दे हुक्म नूं इस हुक्म नूं बुझ लैंदा है, जिवें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बचन कीते है, कहिंदे फिर वो भाई आसा तो रहत हो जांदे है। महाराज जी दे बचन कमाउण वाले सिख आसा तो रहत हो जांदे, बाणी पढ़दे है, नाम जपदे है, सेवा करदे है, सिमरन करदे है, लेकिन आसा कोई नहीं होंदी अंदर। ते महाराज जी फिर दातां भी बहुत बड़ियां बड़ियां दिंदे है। हुण इत्थे एक बचन करदे जाइए, जिहड़े साडे पुराने महापुरश लोग सी पंजाब दे विच, ओ जदों कोई दुखिया कोई शरण च आ जाना उन्हें बेनती कर लेनी, उन्होंने कह देना भाई मूल मंत्र कर लिया कर, कोल बैठे ही शुद्ध उचारण सिखा देना, कोई एक शब्द कोई गुरबाणी की पंक्ति कह देना यह जप लिया कर, हर समय जपदा ही रहा कर। ते ओ जिस प्राणी ने बचन नूं मनना महापुरशां दे, ते उन्हें बाणी नूं कमाउण लग पैना, कमाउंदियां कमाउंदियां उहदे ते किरपा हो जाणी, हौली हौली उहदियां आसामां भी पूरियां हो जाणियां, ते बाद च उह निरिछत भी हो जाणा। उहने इह इक जोड़न दा साधन भी रिहा महापुरशां दा, क्योंकि जदों किसे नवें प्राणी नूं महाराज साहिब जी दी हजूरी च जोड़ना है, जा तीसरा वचन ऐसा है भी असी मंगना केड़ा किसी होर तो है, जे दूजे पासों मंगी है तां लाज मराई है। एक पक्ष नहीं है, जेडे निरोल ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखते हैं उन्होंने उपदेश उस तरह का है, उन्होंने तो पहला उपदेश है जिहड़ा होके हटिया। जेडे गृहस्थी ने लोड़बंद ने कोई दुखीए ने, ते जिहड़े दुखिया दर्द बंद दर आया, जिहड़ा दुखिया दर्द बंद दर ते आया वो कित्थे जाएगा। महाराज जी कहिंदे जदों बाणी नाल जुड़ के बाणी गाएगा महाराज साहिब जी दी अरदास करेगा, महाराज उहदा दर्द दूर कर देणगे। आसा वाले दी
ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਕਈ ਲੋਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ।

महाराज जी कहते वाहिगुरु के नाम तो बिना जेड़ी मन की भुख है ये नहीं जाती पाई, लेकिन नाम का अनुभव किवें होवे। महाराज जी कहते अपने आप तो हुंदा नहीं पाई, हुंदा फिर जिदे उत्ते सतगुरु कृपा कर देंदे उनू। सतगुर नाम बुझाया, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जिनू महाराज जी अनुभव करा देंदे नाम की है, नाम वाहिगुरु है, नाम बाणी है, वाहिगुरु च बाणी च। महाराज जी कहिंदे कोई भी भेद नहीं, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई। बाणी निरंकार दा स्वरूप है। कई बार साडे मन च ख्याल आ जांदा है भी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दुख ना संताप। रब का सिमरन साध कै संग सर्वन दान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद नव निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

पर न पांग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कप हुग जोग, हर नाम जबत कह नाहि वियोग। जन राता हर नाम सेवा नानक पूजय, हर हर देव। हर हर जन के मालिक दीना, हर तन जन को प्रभ दीना। हर हर जन के ओड़स्तानी, हर प्रताप जन अमर न जानी। ओत पोजन हर रसरा ते सुन समाध, नाम रसमा ते आठ पहर। जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर के भगत मुक्त भव करे, नानक जन संग के ते तरे पार जात। हर को नाम काम तेन, हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसे, संत प्रताप दुर्त सब नसे। संत का संग बड़ भागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल काठ अवर न हो, नानक गुरमुख नाम पावे। जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सरबट डोल पूजस नाही। हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। कर शास्त्र सिमृत बखियान, जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया। सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना। पुन दान हो मैं बहु रत्ना, शरीर कटाए हो मैं कर राती। वर्तनेम करे बो पाती, नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खन पृथ्वी फिर है। चिर जीव है महा उदास, तीसर थीव अग्न माहे। होमत प्राण कनक असव है विरपू दान। न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजमत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौ पी हाउ मैं मैल ना जावे। हर के नाम समसार कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।

जन्म मरण ते डरे साधना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सात संग जा कह मिटे अभिमान आवस कहो जो जाने नीचा सो गनी है सब ते ऊंचा

सरस्वती रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दिष्टानी जयंतो साज सुवार सिंगारिया गर्भ वगन महजने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरध पयाव प्रसाक सहन मुख्य प्याव बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु ना बूझै बख्श ले हो तव नानक सीजै जय प्रसाद धार पर सुख बस है सुत प्रात मीत बनता संग हस है जिह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमला जिह प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा

नहीं लावे। ज्यो ठाकुर सर सदा हजूरे, ताक वंदा जान दूरे, जाके टहल पावे दरगे मान, तिसे विसारे मुख दे जान, सदा सदा है भूलन हार, नानक राखन हारे पार। रतन त्याग कौडी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्त्र कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सुहाई तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तोहे गर्तव प्रीत भस्म संग होए, अंध कूप मह पदत विकराल, नानक काढ़ ले हो प्राव दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेखंतर मर माया, सब सनाहे काश करे छिपाय, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुआन, अंतर अग्न बाहर तन सुहाव, गल पाथर कैसे तरे अथाह, जाके अंतर बसे प्रव्याव, नानक तेजन सह समात, सुने अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए ले हो ओढ़ निभावे, कहां बुझारत बुझे डोरा, निस कहिए तब समझे पोरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तव पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हांस गवन, करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसे, अंध केल माया रंग रसे, रेव कर माने मणे प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, चूड़ विकार महालोभ त्रोह, याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिण सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख कन्हरे, कोई न जाने तुम रांत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत विद तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुआए, नानक कहु न सी जई, बिन नावै पत जाए अष्टपदी।

मिथ्या तन धन कुटम सुभाया मिथ्या हम ममता माया मिथ्या राजन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या द्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गुमान अस्त्र भक्त साधकी शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ कहिर है।

मिथ्या मान पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पार विकार, मिथ्या भाव हृदय विकार, बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह, नानक हर हर नाम लय। वृथि सागत की आर जा साज बिना कह उवत सूचा, वृथा नाम बिना तने अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा विहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम।

उठत बैठत सदत सिह त्याई सिह त्याहे जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रख है। जेह प्रसाद करहे पुन बवदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस ब्रह्म को साथ साथ चितारी जेह प्रसाद

कथा स्पदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग बल सगली खोद साध कै संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग विजय प्रभ नेरा साध संग सब उतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नान साध की शोभा प्रभ मान समानी साध कै संग अगोचर मिलाए

कहते ही वृद्धावस्पति जब अकार्य हो कह न दृढ़ते तब पापन तब कहते होता जब धारी अपन सं समाध तब बैर विरोध के संक माध जब इसका वर्ण तिह न जाप तब रिकसो कहो किसे व्याप जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब वो कहा किसो भत परम आपन केले आप वृति जानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनि तब बंद मुक्त कहो किस कहो गणी जब एक है हरग में पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ

मृग में अपार अविनाशी सुखा पणयासन तह जन मरण कव कहा विनाशन जा पूर्ण करता रब सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अब गात गोचर प्रभि का तब चित्र गुप्त केस पूछित लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन सुटे कौन बंदर बादे अपने आप ही चर जाना अपने रूप आप ही ऊपर जा

के कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके रूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जमी प्रधान।

सोचाए सोच न होवई, जे सोची लखबार चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिबतार भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाण पाला खोहे तैक ना चलै नाल। किब सचियारा होइए किब कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चरणा नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे न कोए। गावै को ताण होवै किसै ताण,

असंख्य जाप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भक्त गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूरमो पाकसार, असंख मोन लिब लाए तार, कुदरत गमन कहा विचार, वारिया ना जामा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वढत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुन गा, अखरी लिखण बोलण बान, अखरा सिर संजोग।

अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अचंज है, अमीक है, अर्भीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाव है, औजा है, अनंत है, महंत है, अली के अंदर शरी के अंदर लम्ब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फ्रेक है, उजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे अंदर संगी परमाते नमो भान भाने नमो मान भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समी अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अभ्रेत देव सुतर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो भूपुभे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमः संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुपे अरूपे समस्व निवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओघर्ता परंग परंग परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अगामं समस्तो पराजी समस्तां तामं तेरा जोर जाचरी शन जले है थले है अभीत है अभे है प्रभु है अजू है देश है पेश है भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्त निदाने नमास्त्वंग नृनाथे नमास्त्वंग परमाथे नमास्त्वंग अगंजे नमास्त्वंग अपंजे नमास्त्वंग अकाले नमास्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माहमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वगृसं नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे स्मसं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदयं निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरम अला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले

जतर ततर बिराज हे अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाग रूप रंग ना रेख आदि पुरख उदार मूर्त अजौन आदि असेख दे सौर न भेह जाग रूप रेख ना राग जतर ततर दसा विसा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख धामू न जाए सर्वान सर्वतर मान सदै मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे भेव ना जानी जवेद और कतेव रूप रंग ना जात पास हो जानी के जेब तात्मात्मा जात जागर जन मरण विहीन चकर बकर फिर चतुर जक मानी प्रतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्त थापे सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व रचियो स्वयं गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहता भूत लाख अभेश अंगरागरा रंग जाके जात बात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजना द्रुपूत अंगहीन भंगनाथ में कुपुरख पार सर्वलायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वते अनभेक सर्वशास्त्र ना जानी जय रूप रंग अरेख परमवेद पुराण जाके नेत भाखत नेत कूट सीमृत पुराण शास्त्र।

गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करे निरनामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी शांतना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिश अधिश अदृश अग्रस भगवती शांत त्व प्रसाद कथते कि आ शुज देसा कि आ भिज बेसा कि आ गंज कर्म कि आ भंज मर कि आ भंज भरम कि आ भिज लोक है कि आ दुत सुख है कि अब तूत वरण है कि विभूत करण है कि राजन प्रवाह है कि धर्मंग तू जा है कि आ शोक भरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक है के पाग व्याव के गैबल गैब के अफुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुरिंद के रोजी दहंद के राजग रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दिली है के सर्वत्र बान है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पावण है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाह के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र वेशा है के सर्वत्र कल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र वेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमे के परमंग भीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे कुशल वजू है तमामुर रजू है हमेशुर सलामे सलीखुत मदामे गरीमुर शिखस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकाने जमीनुल जमाने तमीजुल तमामे रजुल निदान है हरीफुल अजीमे रजायगी यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गरीमुल खराज है दृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है पर प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है द्रवा स्वरूप अगाध है अनूप है उमंगा ध्रुपे ना स्वरूप अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गम त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भागे सुसर्भा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है अशिज है अशुत है के नरकंग प्रणास है प्रेतुल प्रवास है नुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक स्वरूप है प्रजुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है लेख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है भूत है अतूत है अनाश है उदास है तंध है अबद्ध है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम है अनि

ज्ञात सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्वप्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशय नंगं सुरभे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगा सुरपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे द्रभंगी द्रकामे द्रभंगी सुरपे सर्वंगी अनुपे ना पोत्रे ना पुत्रे ना सत्रे ना मित्रे ना ताते ना माते ना जाते ना पाते नरसाकं सरीके मितो अमीके सदैवं प्रवाह है अजाय है अजा है भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनुल चिराग है के कामल करीम है के राज कर हिम है के रोजी दहंद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के सुनल जमाल है के गरीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है रासल फिकन है कलंक वरणास है समस्तुल निवास है अगंजुल करीम है रजाय कर हिम है समस्तुल जबा है के साहिब किराह है के नरकंग प्रणास है बहसुल वास है के सरबुल गमन है महसुल रमन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल लेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के मित्तो अभंग है मदभार शांत त्वा प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर भर अगंज हर नर प्रभंज अन गन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनुभव नास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिशुष पंड जल थल मन दिशुष व्यंत अनुभव नास तीर्थ तुरास

अन चंजगात अंदर अंजबात अन टुट भंडार अन ठट अपार आठ सर मत ठीर कर्म अन मरण आनंद दाता महंतर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके कर्ण है बनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है आ जप जप थप थप करता कृत अमृत मृत अमृत मृत करुणा कृत है आ करता करते तरण तृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है आ करता करते अमृत अमृत है अजवा करते अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंक कीर्त है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस गय जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकार नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग ताम संघ साध रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपते कलंकार कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगीय कामे एक अश्री शांत अजाय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटाह अनाथे परमाथे अजवनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनाभे समस्तुल निवासे निर्गामंग विभूते समसल स्वरूपे कुकर्मंग परनाशी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग परनाशी करीमल करिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते अजायब करीमे हरियंग करियंग करीमल रिहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग परनाशी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगारंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पाशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समोह सिदान के देख भरियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात कहू न देखित प्राण पति के श्री भग श्री भगवान की पाए कृपा हूं थे एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन के जात निवारे भारी पुजान के भूप लिब्ध न्याव शीसना जात विचारे एते पै तो कहा पै भूपतंद को नागे ही पाए पधारे जीत फराय सब देश शान को बाज ढोल मृदंग नंगारे गुंजत गुण गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गए नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान पजीवन अंत पवंत के धाम सिधारे तीर्थ नाम दयाद बंदान संजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जवान सबान के पेखा है पावन आहार जति जतार सब सुविचार हजार देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रती बिन एक न लिखा है शुद्ध सपाद रंद वास सासना दुरजान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर परबत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे वीर बार बड़े बरियार बचारे सार की धार बशैया तोर दे समलिंद मवासन माते जान के माल मलैया गाड़े गडान को तोड़न हार सो बातन जग चार लवैया साहिब सर साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन साचर भूत भविख भवान जपाएंगे जीव जिते जलमय थलमय पल ही पलमय सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैतन पापन के बुंज खपाएंगे साध सुम प्रसन्न साध सुम प्रसन्न फिर जग सतर सभय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरात्म जंत लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे
ब्राह्म्य शर्विशन सचिवत अंतपसेजम फास परेंगे जेनार श्रीपाद के प्रा सहपाग तेनार फेरना देह तरंगे कहा पयो जो दौलोचन मूंद के बैठ भक्त्यान लगायो नाथ प्रियोलिय सास समंदर लोग्यो प्रलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ऐसे सो बैस बितायो साज कहूं सुन लेहो सबैजन प्रेम कियो तिन्ही पर पायो काहुल पाहन पूज तरव सर काहुल लिंग गरे लटकायो काहुल अखर वाची दिशा में काहु पशा को शीस निवायो कहु बतान काओ पूजत है पासो को मृतान काओ पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कहु बतान को पूजत है पास कहु मृतान काओ पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं।

अमरे दुष्ट स्वैतम का अभवाब हाद मोहे बचाबो सुखी बस मोरो परवार सेवक सिख सबाय करतार और चांज कर दे कर सबैरन को आसंग रे पूर्णो ए हमारी आसा तोर भजन की रहे ब्यासा तुम्हें शाड कोई अबर न त्याऊ जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद मुझे उभरे मरण काल का त्रासन भरे है वो जो सदा हमारे पच्छा श्रीय सुजू करे और अच्छा राख लियो मुझे राखण हारे साहेब संसहाय बिहारे दीन बंद दुष्टन के हंता तमह पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा।

सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के बट बट की जान जब कर करा करतारा प्रजा तर तब देह अपारा जब आ कर तो कबू तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सिर

अंड जेर सेत जकीनी उत्पज खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंब भया जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सगल मलेश करो रण काता जय स्तुचता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे

गुरु नानक देव साहब जी कहंदे दुहागण जीव रूप इस्त्री वाहिगुरु दा नाम जपे तो बिना ये शरीर नू छड़ के चली जांदी, बिछड़ जांदी है शरीर।

रिड़क दे देखे। महाराज जी कहते की करना ऐसे महल नू बना के जेड़ा पापा वाजो होवे नाही मोया सात न जाई। जिहड़ी माया जिहदे जिहदे द्वारा इन्ना कुछ रच लिया पापा बिना इकट्ठी नहीं हुंदी ते मरन वेले साथ नहीं जांदी ना माया रचित महल उल्ट के जिहड़े दुख झोली च पैंदे आ वखरे। इस करके महाराज जी कहिंदे मैल पाउणा सच्चा पाओ ओ वाहिगुरु दे नाम दा पाओ। झूठे मैल दुखदाई दुखदाई मोह माए।

महाराज जी कहते भाई वो सुहागण वो जीव रूप स्त्री सच स्वरूप वाहिगुरु के स्वरूप के टिक जाती है बस जाती है जिहड़ी वाहिगुरु नूं प्रेम करती है। आखो सतनाम प्रेम दी खेड़ है सत संगत जी। हुण वाहिगुरु नूं प्रेम करना की है मन लो आपां कहीए भी कोई मित्र होवे साडा असीं अपने मित्र नूं तां प्यार करदे आ पर उहदे बच्चियां नूं नफरत करदे आ ते की कदे ओ मित्र साडे तो खुश होएगा कदे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिहड़ी उहदी सब तो प्यारी चीज है उहनूं असीं नफरत करदे आ। धन दौलत संपत्ति आपदे बच्चियां नूं बचाउण लई बंदा सब कुछ बर्बाद कर दिंदा। मेरे बच्चे सही सलामत रहण ते असीं कहने रब नूं असीं प्यार करदे आ। एक पिता एक सकेहा मुबारक ते रब दे बच्चियां नाल नफरत करदे आ इह किवें चल सकदा है? रब दे बच्चे कौन है? सारे रब दे बच्चे ने। कोई भी ऐसा नहीं है जिहड़ा वाहिगुरु दा बच्चा नहीं है। महाराज जी कहिंदे दो गले किरदार नहीं चलदे, एक हो के आओ मेरे कोल, एक अनुभव करके आओ, एक समझ के आओ ते फिर किरपा हुंदी है। इहनूं प्रीत कहिंदे, इहनूं प्यार कहिंदे है।

रास सोयना रास रूपा कामण रास परमल की वास रास कोड़े रास सेजा मंदर रास मीठा रास मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास जित बोलिया पद पाई सो बोलिया परवान फेका बोल विगुचना सुन।

जित सेव्या सुख पाइये तेरी दरगाह चले मान रहो सच सरा गुड़ बाहरा जिस सच्चा नाओ सुने वखाने जितरे हो तिन बलिहारा जाओ तामन खीवा जानिए जैमे लिपाए थाओ नाओ नीर चंग्याया।

कुंगो के काया रत्ना के ललता अग्रवास धन सास अठ थड़ तीर्थ का मुख टिका तितकट मत विगास उत्तम ते सलाना सच नाम गुणतास बाबा होर मत होर होर जैसो वेर कमाय कूड़े कूड़ा जोर रहो पूज लगे फिर आके सामले संसार नाव सदाए अपना हो सिद्ध सुमार जा पत लिखे ना पवे सभा पूज कुवार जिनको सतगुरु थाप्या तिन मेट ना सका कोई उन्हां अंदर नाम निदान नाम प्रगट होए नाव पूजिए नाव मनिए अखंड सदा सच।

जाय। गुरमुख वस्तु साई सच वखर सच रास जिन सच वणजा गुर पूरे साहबास नानक वस्तु बचन से सच सौदा जिस पास श्री राग महला।

पुर मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम न बुझिया अमर जन में आवे जाय रव तन सुचा सुवाखे जिसमें साचा नाव पै सच राति देहरि देवा सच सुहाओ सच नदर निहालिये वर्ण पावे ताओ सच ते पवन प्या पवन ते जल होय जल ते त्रिपण साध्या घट घट जोत समोए

0: तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरे
1: नानक
0: नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरे
1: किरकार बह सो
0: हर जन

0: सीन निर्भो होए पर जो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी
1: नानक ओट
0: पकरी प्रभ स्वामी
1: गोड़ी महला पंजवा माज दुख पंजन
0: तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आठ पहरा राधिए पूरन सतगुर ज्ञान बसे पार ब्रह्म सोई सुहावा था।

0: ना मेरे ठाकुर अगम अगाध पै कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप तत्ती वाह नलग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिर जनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव तू ही निरंकार तू सदा सलाम तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्राप्त बेन अपनी भक्ति धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्राप्त बेनती अपनी भक्ति धन धन गुरु गोबिंद सिंह की मां धन धन गुरु गोबिंद सिंह की मां धन धन गुरु ग्रंथ साहब की मां धन धन गुरु ग्रंथ साहब धन धन बाबा नान सिंह जी मां धन धन बाबा नान सिंह जी मां कोट कोट प्रणाम कुल चक माफ ते चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम चढ़ी करा तेरे भाणे स्वातम उठ गए शिवा मलेशकर कूड़ा प्रसाद डांका बाजे फतेह का निरंकार अवतार नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुरेवता जग मग जोत बराज जी अब चल नगर मजा श्री सचखंड के दरबार जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं, अनल अगम जैसे लहर में ओदत जल के, ओदत जल के वल जल माही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं, अनल अगम में जैसी लहर में ओधत जल केवल जल माही, मारवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहो, नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी, अशत राज विशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, अशत राज विशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, राज पुयंगम प्रसंग जैसे, हर अवकाश मर्म न जनाया, अनक कटक

0: एक न जाने त्रै गुण पढ़े हर एक न जाने बिन बुझे दुख पावन
1: जातस पावे तां आप मिलाए गुर शब्द दुख चुकाए नानक नामे की सच्ची वड्याई नमो मन सुख पावन माज मला तेजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत् पछाने सो पंडित होई आ तरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावण्या हो वारी जवारी

जब सुन रंजन रस मन क्या बोले जो कि कौन करा काया कमली सहना मेरी मेरी क्या बयानीता प्रण नंग नंगीता जे फिर बाछे पछताणीता गौड़ी चेती वाला पहला औकत मंत्र मोल मन के जी कर दृढ़ कर जय दृढ़ चित की जेरे जनु जिने के भाव करोगे काटन हर हाली जेरे मन एको साहब पाई रे तेरे तीन गुणा ससास होए लखन लखन जाई रे रहा सकल खंड माया अतर मीठी हम तो पंड जाई रे

अमृत न पियो मेरे भाई, सिमर सिमर साहब तव तब जाई, ताजमान जन्म मरण वारो, हर के दास के चरण नमस्कारो, सांस सांस ब्रह्म ने सवाले, सोतन संचो जो चाले नाले, तिसे बरावत जिस मृतक भाग, कहो नानक ताकि चरनी लाग, गौड़ी महला बजा सोके हरे किए किरमाए, अमृत दैट सांझ जवाए।

भगत पज गुणी निदान नानक दरगह पाइये मान गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हर मीत भ्राम बिंस गाय गुण नीत पूर्ण सुबद हर संग पहरुआ जग सिमरन जम नहीं डरुआ राव चरण कमल प्राप हृदय निवास सगल दुख का होया नास।

थोड़ा पंजवा हर नाम भजन कर सूचे कोड ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर गय चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल बिख नसे।

जगत ना बना। राम रस की जय झोल महारस हर अमृत पीजै रहाओ। निर्मलोदक गोविंद का नाम मजन गर्त पूर्ण साब काम। संसांगत गोष्ठ होए कोट जन्म गए किल्प खोए।

अंतर लख न जाय लख आवे च पड़दा हो मैं पाई माया मैं सब जग सोया परम कहो क्यों जाई एका संगत एक ग्रह बसते।

कुंज गौर सो पाए अनुपाव कर नहीं पावे बिन सतगुर सरनाए जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत ले बुलाए पंजना मैल मंगल गाया हर नानक भेद न पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सच भया भ्राम खिन मनाटा मिल ज्योति ज्योत मल समाई रहाओ दूजा गोड़ी माला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बेट लै सतगुर मुझे बतायो रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोह विश्वास हो आयो कह पे गुरु अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लह सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो हूण सौ सोई पन हो सी सुख तो कहाँ दिखायो खंड ब्रह्मांड गाय को ठाणा गुर परदा कोल दिखायो नौनिद नाम निधान एक उठाई तो बाहर कट जायो एक अनक अनक पात साजी ब प्रकार रचायो कहो नान परम गुरु खोईया इवत तै तत् मिलायो गौड़ी माला पंजवा अहोत घट दिन सुना अहोत घट है दिन सुनना रे मन गुरमन का सुवारे रहाओ करो बेनती सुनो मेरा मीता संत टहल की बेला यह अखाड़ चलो हर लाहा गे बसन सुहेला यो संसार पुकार संसिंह तरह ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियाए हारस अकत कदा दिन जानी जा को आए सुई बिहा जोहर गुरते मने बसेरा नैज घर महल पाव सुसज बहर न होय गो फेरा अंतर जामे बिरख बिदात सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांग मुख कर संजन की तूरे गोड़ी महला पंजवा राग पदा प्रभ मेरे मोहि निर्गुण साप गुण तेरे रहाओ पंज पगा दी एक गरीबा राखो रख नहारे खेत गुरु हर बहुत संताप आयो सन तुहारे कर गर हारे अनग पाती छोड़े कतु नाई एक बात सुनता की ओटा सा संगमट जाय कर गर पसंद मिले मोहे तिंद धीरज पाया संत मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीतल महाबिखा दे सहली बाणी कहो नानक मन पाया प्रकाशा पाया पाद निरबाणी गोड़ी महला पंजवा ओ बनासी राया निरपो संगत मारे बसते योडन कहाँ ते आया रहा एक महल तो हे अपार एक महल निमानो एक महल तू आपे आप एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित भगता एक महल खल होता एक महल तू साब के जिग्राह जे एक महल कछुना लेता काट के पुत्री का करे बपरी कलाम ना आरो जाने जैसा पे एक कराब है बाजीगर ओता सोई साजया ने अनगोडरी बहुत पात करिया आप हर कुबारा जैसे महल रख तैसे रहना क्या कर बेचारा जिन किसकी यह सुई जाने जिन यह सब वेद साजी को नानक परम पर स्वामी की कीमत अपने काजी गोड़ी महला पंजवा छोट छोट रे बिखुआ के रसुआ और जर रे बावर का परे जो किरके हरियायो पसुआ रहाओ जो जाने तू अपने का जय सो संग चल तर तसुआ नंगो आयो नाम सदासी फेर और काल करसुआ एक बेख रेख समीला राजमा जित तीन हूं लोहा सुआ शिव डोर दिन सरनी जी को काजन किनो कसुआ कर कर देवी वरदान हर योग तन खी नसुआ जो मोहयो न मोहनी बहला उत घट ना ही रोचा सुआ जग ऐसा मोय गुरु दिखायो तो सब न पारो तज गर्भ सुआ मर ब्राग संत बतायो दृढ़ नानक दास भगत हर जसुआ गोड़ी महला पंजवा तुझ बिन कम न मारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहा अंदर के बे तुम ही जानी तुम ही सज सहले सर्व सुख मत तो ते पाए मेरे ठाकुर अगया तो ले बरना सा को तुमरे रंगा गुण दान सुख दाते अगम गोचर प्रभ मनासी पुरे गुरते जाते प्रभु काट गे ने केवल जब दे हमें मारी जन मरण को चुको सहसा सासंग दरसारी चरप घर गुरु सेवा बार जब लख बरिया जब प्रसाद उपजल तरिया जन नानक प्रसंग मेरी या गुड़ी महला पंजवा तो बिन कम रजावे तो

शब्द देव के प्रकाश प्रेम के जालिता के काटे जागो शासन विश्वासा तारी लपा जल तारू बिखड़ा साधु संगा पूर्ण हो मन की आशा गुर पेट्यो हर रंग।

ऐसे दृष्ट ओह चंद चकोरी। राम संत में भेद किस नाही, एक जन कही मैं अला करोरी, जा कही प्रगट प्राप हो वा अंदन कीर्तन रस नर मोरी, तुम सम्राट अपार अति ऊचे सुख दाते हे प्रभान दोरी, नानक प्राप की जय के पावन संतन का संग संगोरी। गोड़ी महला पंजवा, तुम हर से तीरा ते संत निभाहे ले हो मोह पुरक बिदाते ओढ़ पचाव दाते रहा, तुमरा मर्म तुम ही जानिया तुम पुण्य पुरक बिदाते राखो शरण नाथ दीन को करो हमारी गाते, तरण सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते, कर कृपा जसरा को संगे तुत पार पराते, ईत उत प्रभ तुम समरथा साब के तुम रहात है, ऐसा निदान दे मोह को अर्जन चला तुम हमारा साथ है, निर्गुण अर्गु गुण कीजे हर नाम मेरा मन जाय पै, संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन सिद्ध त्रापै। गुड़ी महला पंजवा, ससमय देव मुख सदगुर पै दयाल देव रहाओ, काट जे व्री कियो दास रो संतन टहलाओ, एक नाम को थियो पुजारी मुख अचर गुरेव दिखायो, पय प्रकाश सर्व जियार गुरु ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्त ज्ञान पर ठहरायो, मन आ गया सर्व सुख पाए दुख ठोक वायो, जो प्रसन्न पाए प्राप्त करो सब अंध रूप दिखायो, ना कुछ अवध ना कुछ जावत सब खेल गयो हर रायो, कौन नानक अगम गम है ठाकुर भगत भगत टेक हर नायो। गुड़ महला पंजवा, पर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गहे जारे, जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताक नाम जपी जारे, राव मन की मत्या गुहार जान कंबू सुख पाई रे, जो प्राप करे सोई पाल मान सुख दुख ओहित आई रे, कोट पतत उधार के निम करते बार ना लागर, दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस पावे तिस नवाज रे, सबको मत पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर, दें दे तोट नाही तुस करते पूर रहो नरत नागर, जजक जज नाम दे स्वामी कट कट अंतर सोई रे, नानक दास ताकि सुनाई जाते बिरता न कोई रे। रागोड़ीपुर भी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबो न मनो बिसार, इहां सर्व सुख दात सगल कटा प्रत पारे, रहा ओ मां कष्ट काट कन पितर रस नाम चितार, सिद्ध सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे, गर्भकुंड नरक ते राखे पगजल पार उतारे, चन कमलियारत मन मह जम भी त्रास बिदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर जाग मैं पारे, गुण गावत त्यावत सुख सा

हर्क सोगहा ने मृत दुख सुख चित संसर गुर मिले रहाओ जौल हो कैस सोचो चित वो तौल दुखन परे जो कृपाल गुरपुरा भेटिया तो आनंद सहजे जित सियानप कर्म हो किए तित बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त पाए जौलो

अच्छा एक सुनो रे पाही गुरिया सी बुझ बुझाई लाए परदा ठाकर जो पेटे हो तो विसरी तात पराई कहो न जाई हो चंपो सुजान जैन चाखिया कहो नानक सचे भय बिगासा गुरदान हृदय राखिया गोड़ी माला महला पंजा।

तब कह कमावन पारिया जब कुछ न होता जब एक निरंजन निरंकार प्राप सब कुछ आपे करता अपने कर्तव्य आप जाने जिन रचने रचाया कौन करण हरे आप सब परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिना वर क्रिया व्रत जब संयम कर्म कमाण ए और मुश रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता तिनका आड़ न पाया आगे चलना और पाई वहां काम न आया तीर्थ न आया।

राग गौड़ी माज महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान जुरत मारे सुख वसा सत सब निशान रहाओ सबे गल्ला जतिया सुन के चुप किया कदे सुरत ना लतिया माया मोहड़िया दे बुझारत सारत है से अखी डिठड़िया कोई जमूर का लोबिया मूल न सुनी कहे आए किस दो चौक्या गणी साब एक साध मिट्टी एक

सब भय कृपाल गुसाया नठे सुख संताप तत्ती भाव न लग गए सतगुर रख आप गुर नारायण दयो गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर तुटे साहब किस पाया जन नानक सत बलहार गौड़ी माझ महला पंजवा हर राम राम राम राम जब पूर्ण होय काम रहाओ राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पितर हर जस सुनिए जिस ते सोई।

तन मन फिका होए बन परमेश्वर जो करे फिर जीवन सोए अंचल कह के साथ गातरना संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सा परिवार

को जय पाद निर्वाणा जन नानक खेल कटन किनु गुरमुख जाना गोड़ी माला नावा साधु रचन राम बनाए एक बिन से सर मान अजर जलख्यो न जाय राव काम क्रोध मोह बास प्राणी हार मूर्त बिसराई।

सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, इन मगन रह माया मैं को कैसे गुन गावे राव।

रत्न जन्म बनुत हार्यो गोविंद गात नय जानी निम्न लीन पायो चरणन स्यो व्यर्था औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सकल जैक माया मोहया निर्मपद नहीं पावे गुण मल नाम नर चित भवत डार रे दीन दयाल सकल पै पंजन सन तुम पार रे रहाओ वेद पुराण जास वेद पुराण जस गुण गावत ताको नाम ही मतार रे पावन नाम जगत में हार को सिम सिम का सुमल सब हार रे मानस देह बहुर न पावे कसु पाव मुक्त का कर रे नानक गद गाय करना मैं बहु सागर पार उतर रे रागोड़ी अस्पति मल।

हमें करत्या न सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल भूत पावे दोए सुख मावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुवारी सब सुख मांग नाम बिसारी राव अदिष्ट दिसहता कया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दिस सुबाए सेवा सुरत एक लि बिलाए सुख मांग दुखिया कल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त न होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अग्न शब्द बुझाए दूजा परम सह सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण